0: पक्षी मैं था,
1: चीची बोल गया, वृंदा मैं था,
2: डिप्यासिया
3: फोगल वाइश, लुचेलो एरो यो,
0: その鳥は私でした。